देवी को महिमा नजानी यसरी हे दूत के बोल्दछस् केरा सुम्ब ने सुम्ब भाई दुई को तारीफ के गर्दथस्।

राम गए बनवानी पछी मारे हरिनी हे मको सीताजी हरियो जटाए उतरी गो सुग्रीव सँग भेट भयो बाली मरन गयो लङ्कापुरी खाग भयो रावण को मुकर न मरन गयो श्री राम आयन यति हो नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: मेरो केटा के छ खबर?
1: ठिक छ।
0: अनि आराम छ नि?
1: हजुर आराम।
0: ए ल ल ल ल
1: अनि साथी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा
0: त? के कुरा?
1: पशुपति आउँदैछ नि।
0: पशुपति आउने रे?
1: हजुर।
0: ल म एकछिन फोन गर्छु है त।
1: हस् हस्।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779 9849924909 9844949913 9841699945 9844446550 आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

रामेश्वरम दर्शन, वैष्कुण्ड स्नान, कन्याकुमारी, लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मंदिर दर्शन, भीमा शंकर, त्रिअम्बकेश्वर, शिरडी साई बाबा, ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुंडा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाव भेड़ द्वारका, बिंदु सरोवर, मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मंदिर ब्रह्म सरोवर, अम्बा देवी दर्शन, वृंदावन मथुरा गोकुल रमन रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अंतिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीको दोलाखा।

0: समझन होस।
1: साथ ही यहाँ उत्कृष्ट क्वालिटी का काजू, किसमिस, ओखर, हाड़े बादाम, छोकड़ा, फर्सी को बिया, खजूर, कालो मिश्री, खुरपानी, सूर्यमुखी को बिया, नरिवल, अंजीर, मक्खन आदि। थप जानकारी को लगी प्रोप्राइटर नारायण थापा 9844554060, प्रकाश थापा 9844554060। नारायणी कुटानी पिसानी तेल मिल चरीकोट सादो बाटो नगरपालिका कम्प्लेक्स भएको घरमा।

0: भन्नु हो केटा के छ खबर?
1: ठिक छौ।
0: अनि आराम छ नि?
1: हजुर आराम।
0: ए ल ल ल ल ल
1: अनि साथी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ?
0: के कुरा?
1: पशुपति आउँदैछ नि।
0: पशुपति आउने रे?
1: हजुर।
0: ल म यसरी फोन गर्छु है त।
1: हस् हस्।

0: नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैले में थोपलो साथ में गया आज मोमपदे प्रसाद साहब आज विक्रम संबत 2083 साल आश्विन शुक्ल पक्ष सन 2026 अक्टूबर 14 तारीख आश्विन 28 गते बुधवार चौथी तिथि अब स्तुति करूं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पे भरी

sari chaya hun raja navush kai sare daulat le paripurna hos pavana jai nai pare ka gare mandakun savale duryodhana saman karnai saman danama tagat sri balaram kai sari havash sadvata kai kamama राजा धर्म कुमार कैसरी श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हवस सुजन मनुन बड़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित का